0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: चांदनी

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

टेनमैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे
3: Thank you.

0: Tanisha. Beautiful track from the movie Chitore, only on Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath. Bindas morning, lekar aa gayi ji main. A very good morning, meri jaan. August 30th, Sunday ka din, school ki vapsi. Ji, aaj school start ho rahe hai. To पेरेंट्स को कैसा महसूस हो रहा है, बच्चों को कैसा महसूस हो रहा है? आई एम श्योर दे मस्ट बी रियली एक्साइटेड, यू नो, अपने फ्रेंड्स से मिलने को मौका मिलेगा एंड यू नो एक रूटीन में फिर से आएंगे एंड नए क्लासरूम्स होंगे, न्यू बुक्स होंगी. इट वुड बी फन, राइट? हाँ जी.
1: तारीफों से नहीं तू मानने वाली.
0: अरिजीत सिंह की आवाज में कुछ ही देर में आने वाला है और अली जफर साहब भी इंतजार कर रहे हैं.
1: है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों.
0: Absolutely beautiful track.
1: आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे.
0: हां जी, एंड मुसाफिर कैफे से ये खूबसूरत गाना.

अरे अरे कुछ गाने तो ऐसे दिल को छू ही जाते हैं बाय गॉड. बाकी आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर ऑल द किड्स आउट देयर, क्योंकि यू नो जब भी स्कूल का ऐसे नया सेशन स्टार्ट होता था आई वुड गेट सुपर हैप्पी, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम के बाद, इतनी लंबी ब्रेक के बाद फ्रेंड्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा एंड साथ में बैठ के हम यू नो नई चीज़ें सीखेंगे. देयर विल बी फन, देयर विल बी एक्टिविटीज, देयर विल बी गेम्स और स्टडीज ऑब्वियसली, और यू नो नई नई चीज़ें जो करिकुलम में ऐड हुई है बहुत मजा आने वाला है. सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे यार. अभी तो शुरुआत हुई है, पहले आप मुझे अपने हाल चाल बताओ. इफ़ एनी किड इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, कैसा महसूस कर रहे हो यार? हाउ इज द फीलिंग गोइंग बैक टू स्कूल? लेट मी नो. 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड एंड टू यू बिंदास.

0: Pilipinas number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
4: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
5: हाय, आई एम राजकुमार राव।
6: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
7: हाय, दिस इज दिशा पांडे।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. अरिजीत सिंह की आवाज में तारीफों से तू नहीं मानने वाली, क्यों मानू, मैं तो नहीं मानूंगी। तेरा जिंदगी मूवी से इतना प्यारा सा गाना सुना आपने रेडियो 106.3 FM पर, विदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, देखिए शायद आपके साथ और गुड मॉर्निंग मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। सो वी हैव गॉट अ मैसेज फ्रॉम नाजनी जी हियर। गुड मॉर्निंग, यू कांट काम द स्टॉर्म, what you can do is calm yourself and the storm will gradually pass. Indeed, hum kaisa react kar rahe hain kis situation mein, it says a lot about us. So jab bhi koi aisi situation aaye, jab you know bahut zyada hyper anxiety ho rahi hai, stress ho raha hai, thoda sa pause lo, you will realize how to react and how to deal with the situation. Actually hum wo pause hi miss out kar jate hain na, to jo us waqt dimag mein aata hai hum wo kar dete hain, वो नहीं करना होता है। एंड अमराज जी का भी गुड मॉर्निंग आया है हमें, एंड उन्होंने बड़ी सुंदर सी ऐसे फूलों के गुलदस्ते की फोटो भेजी है। संधू जी का मैसेज है, हेलो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे फिल्ड विद पॉजिटिविटी एंड जॉय, स्माइल ऑसमली एंड मेक एवरी मोमेंट काउंट, हैव अ ब्लेस्ड डे, जियो बिंदास। एंड शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज है, कहते हैं always do good, it comes back to you in unexpected ways, believe it, and that is so so so true. I absolutely agree with this. Just be kind and nice to people around you and wo aapke paas tenfolds mein aayega yaar, and also be nice and kind to yourself, theek hai, stay tuned and Jio Bindaas. Cool song radio olive par aane wala gana, cool song of the hour.
2: सर क्या बात, ये बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

Kicking your ass, me. Oh, my God. Beautiful track from the movie Life in a Metro. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par. And I read something and it was absolutely beautiful. Obviously, aapke saath share karna banta hai. So it says, हासिल चीजों की कदर करना उतना ही जरूरी है जितना उसे हासिल करना. एंड दैट इज सो ट्रू. यू नो कभी कभी हम कुछ चीज़ों में बहुत एफर्ट्स डालते हैं. इट कुड बी अ जॉब, अ करियर, यू नो समथिंग यू वांटेड टू बाय और अ रिलेशनशिप, राइट. लेकिन जब वो मिल जाते हैं ना, उसके बाद ये लगता है कि अरे अब तो ये मेरा ही है, ये कहाँ जाने वाला है. एंड वी स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स. It doesn't work that way. वो efforts continue रहने चाहिए. आपको वो चीज़ अगर मिली है क्योंकि आपने efforts डाले थे, अब आप efforts डालना बंद कर दोगे तो वो चीज़ें, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा भी तो सकते हैं ना. So never stop being grateful for what you have and always, you know, उसको अपने पास रखने के लिए और उस चीज़ को संभाल कर रखने के लिए efforts continue रहने चाहिए. जी हाँ, sending an amazing track your way, उस्ताद राशिद खान साहब की आवाज़ में. Stay tuned, Andrew Vindas.

As I said, जैसे ही school days फिर से आएंगे, we're gonna start blackboard stories again. And आज का जो मेरा सवाल है, वो बच्चों के लिए है खास. So tell me, it's a riddle, ठीक है? You have to tell me the correct answer. I have four legs, but I cannot walk. You sit on me in the class. What am I? I have four legs, but I cannot walk. You sit on me in the class. What am I? किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ये आपने मुझे बताना है. 3311063 पर मैसेज कर दीजिए, या फिर बेटर कॉल कर दो यार 4444106 पर. किड्स, इफ यू वुड सेंड मी अ वॉइस नोट, दैट वुड बी बेटर. एक बार फिर से रिडल सुन लो. I have four legs, but I cannot walk. You sit on me in the class. What am I? 3311063. Sending an amazing track your way. Stay tuned and Jovindas Meri Jaan. Radio

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनिषा,
1: विशाल मिश्रा की आवाज में पहले भी मैं ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपकी सैड बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर, और मैंने आपसे सवाल पूछा था.
2: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज.
1: हाँ जी, सो ब्लैकबोर्ड स्टोरीज का मेरा आज का सवाल था. आई हैव फोर लेग्स बट आई कैन नॉट वॉक, यू सिट ऑन मी इन द क्लास, व्हाट एम आई? एंड आई हैव गॉट आंसर्स ओवर हियर. यस, मुझे बहुत सारे क्यूटीज के वॉइस नोट्स आए हैं एंड दे सेड द करेक्ट आंसर. ऑब्वियसली एक आधी गलत है, बड़े चुक चल जाता है यार, इतना तो हम मैनेज कर ही सकते हैं. यस, द करेक्ट आंसर इज चेयर. एंड किड्स आर अलॉन्ग विद दैट, यू नो, द आंसर के साथ मुझे ये भी बता रहे हैं कि हाउ एक्साइटेड दे आर टू गो बैक टू स्कूल एंड यू नो टू मीट देयर फ्रेंड्स अगेन. और नई नई बुक्स के साथ जो नया नया नॉलेज दे गोना गेन, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग टू यू नो हियर ऑल दिस. बिकॉज पढ़ाई के लिए तो मैं नहीं खुश होती थी कि भाई पढ़ने जाना है स्कूल, पर हाँ फ्रेंड्स और नई एक्टिविटीज़ एंड देन यू नो ऑल द न्यू थिंग्स आई एम गोना लर्न, उसके बारे में आई वॉज रियली एक्साइटेड. बट द किड्स आर समथिंग एल्स नाउअडेज. नए घंटे की शुरुआत हुई है इस कमाल के आवर में. कमाल के गाने भी तो बनते हैं. ब्यूटीफुल ट्रैक है. जी, एंड अलॉन्ग विद दैट ये भी आ रहे हैं. देखो, बच्चों से तो बहुत बात कर ली कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है स्कूल जा रहे हैं आज वो. मैं जानना चाहूंगी पेरेंट्स से आपकी क्या फीलिंग है, बहुत खुशी हो रही है या फिर ऐसे लग रहा है कि ओ आई एम गोना मिस माय बेबी टाइप्स, यू नो, थोड़ी देर के लिए है. बट या Tell me what all you guys are feeling. 3311106 3 per stay tuned and Jio Bindaas.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए बिकॉज लुलू बिग 5 days डील्स आर हियर। 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवीज, फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स। और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, 5 days बिग डील्स बिग सेविंग्स। विजिट लुलू हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com। लुलू बिग 5 days डील्स, मिस किया तो डील।
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Namaskar, main hu R Madhavan. Aap sun rahe hain Radio Olive 106.3 FM.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में। मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Jyoti Nurak Yavaz mein Dhurandhar Dhiruvent se tere ishq ne yaar only on Radio Ala 106.3 FM. Danisha aapke is sad bindas morning chal rahe hain ab. Like this weather. It's too hot. It's too humid. So right now the temperature is 35 degrees and it feels like 45 degrees. And yahi yaad dilana chahungi ki please apne saath, you know, water bottle carry karke rakhe and bahut sara sunscreen lagaye aur light khana khaye kyunki weather abhi bhi bahut garm hi hai. Yes, Suhail Star has risen, but abhi time hai. Theek hai, 20th September ke baad jo hai temperature mein thoda sa aise aapko डिफरेंस देखने को मिलेगा. सो तब तक के लिए भी अपना ख्याल रखना, उसके बाद अलग तरीके से रखना है, उसके बारे में भी बात हो जाएगी. बट लेट्स जस्ट यू नो लुक फॉरवर्ड टू दोज प्लेजेंट डेज इन दोहा बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. बहुत ही मजेदार हो जाता है मौसम, मजा आ जाता है. एंड टू ऑल द किड्स हु आर गोइंग बैक टू स्कूल टुडे, मस्ती करो, मजे करो, बट स्टे हाइड्रेटेड. ओके, पानी पीते रहना है. एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
1: द वेट इज फाइनली ओवर

0: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
0: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyada Medical Center.
2: JCI Accredited Riyada Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyada Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

जावेद अहमद साहब की आवाज में बिन तेरे क्या है जीना, खूबसूरत गाना बोला मैं मूवी से ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर, एंड बैक टू स्कूल एक्टिविटी जो थी वो थर्सडे को हुई अबूसद्रा मॉल में, एंड इट वाज सो मच फन। बहुत सारे बच्चों से मिले हम, बहुत सारा फन किया, एक्टिविटीज करी, गेम्स खेले, कलरिंग किया, एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू मीट ऑल ऑफ यू। लेकिन पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, देयर इज अनदर अमेजिंग बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब हैपनिंग फॉर यू। रियादा मेडिकल सेंटर के साथ मिलकर रेडियो ऑलिव एक और बैक टू स्कूल इवेंट आपके लिए लेकर आया है। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपने बच्चे को उसके लिए, तो आपने बस इतना सा करना है OR स्पेस बच्चे का नाम लिखकर 3311063 पर भेज देना है। कब होने वाला है ये? कमिंग फ्राइडे, दैट इज 4th of September को सुबह 9 से 11 बजे। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज प्लान है बच्चों के लिए, एंड यू नो इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए तैयार करी हैं हमने, सो डू नॉट मिस दिस आउट। और इसमें स्लॉट्स बहुत कम हैं, सो जितना जल्दी कर लोगे उतना बेहतर। क्या करना है आपको? OR स्पेस बच्चे का नाम एंड सेंड इट टू 3311063 एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसेराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए

0: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
1: Olive सुनो रेडियो नेटवर्क, Qatar's number one Asian radio network.

Arijit Singh ke awaaz mein Kesariya from the movie Brahmastra only on Radio 106.3 FM. Darisha aapke saath bindaas morning chal rahe hain yahan par. And वैसे तो कतर में सभी लोग बहुत समझदार हैं and they exercise caution, बहुत carefully drive करते हैं. But still, because schools have started again, so Ajkal is reminding you to, you know, be cautious while driving in the school zones. थोड़ा careful रहे अगर आप schools के आसपास से जा रहे हैं, especially during the drop off and pick up. And रुक जाइए जब भी आपको दिख रहा है कि एक स्कूल बस आ रही है. Never overtake it and do not block pedestrian crossings or walkways while dropping off or picking up children. This is for the parents. Children should cross roads only at designated pedestrian crossings. ऐसे दौड़ नहीं लगानी है सड़कों पे. Be very careful about that. Drivers should park only in the designated parking areas and सभी traffic rules और road signs को follow कीजिए. Please, please, please, अपनी और उनकी safety के लिए, ठीक है? And the speed should be maintained at 30 km per hour in school zones. और बस यार, ख्याल रखो अपना और अपने आसपास सभी लोगों का, और सब बढ़िया है फिर तो, है ना? Stay tuned and Rio Bindas sending Vishal Mishra की आवाज में क्यों मजा आ रहा है. Beautiful track, yeah.

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय, मैं हूँ सुहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Danisha.
1: जैस्मिन सैंडलेस और सतिंदर सरताज की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना आ जाइए सजना। वेल, किधर जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज HMC ने हेल्थ केयर और भी ज्यादा फास्टर आपके लिए बना दिया है और बहुत ही कमाल के जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 11.3 FM, तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। सो जो वेटिंग टाइम स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए होता था इट वॉज ओवर 2 months और वो अब सिर्फ 2 हफ्ते तक का हो गया। जी हाँ, इतना बड़ा चेंज आया है। ऑल्सो टू रिड्यूस दिस वेटिंग टाइम HMC ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ काम किया है और अपने जो क्लिनिक आवर्स हैं वो एक्सटेंड किए हैं इनटू द इवनिंग। दे हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग सम क्लिनिक्स इन 2 shifts एज वेल। सो HMC हैज सो फार प्रोवाइडेड अराउंड 25 million हेल्थ केयर सर्विसेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, अ ह्यूज नंबर एंड कमेंडेबल सर्विस। एंड्रॉय HMC की ऐप है उस पर अभी 400,000 यूजर्स हो गए हैं एंड सो फार नियरली 3 million ट्रांजेक्शन्स भी हुए थ्रू इट। एंड उस ऐप के थ्रू पेशेंट्स कैन चेक मेडिसिन, ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स, रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स एंड दे कैन ऑल्सो चेंज देयर अपॉइंटमेंट्स एंड रीऑर्डर देयर प्रेस्क्रिप्शंस। अराउंड 16 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नाउ ऑफर 24-hour अर्जेंट केयर फॉर लेस सीरियस कंडीशंस, हेल्पिंग रिड्यूस प्रेशर ऑन हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स एंड इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ऑल दिस इज बीइंग डन for our better health and kudos to the entire team, they have been working so hard ki hum better health mein aur hame proper treatment mile. On that note, sending cool song of the hour for you. Stay tuned and Jio Bindaas Meri Jaan.
0: Cool song
1: radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: Kya baat hai sir, kya baat, ye baat hai
0: cool song.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
4: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए वो।

Tanisha. Sorry, Kamar Sunidhi Chauhan ki awaaz mein gustak dil from the movie Dil Mange More only on Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par, and I know after last week's event, dil more to mang hi raha hai. Isliye hum lekar aaye hain ek aur back to school activity aapke liye. Ji ha. So this is the back to school junior care club, jisme sara focus hoga aapki health aur hygiene par. और रियादा मेडिकल सेंटर के साथ मिलकर ऑलिवसन रेडियो नेटवर्क आपके लिए लेकर आया है. इट इज़ गोना हैपन ऑन 4th ऑफ सितंबर, फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 11 AM. जी हाँ, सो स्कूल के जो ये दिन शुरू हो गए हैं उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे मैनेज करेंगे. बस आप रजिस्टर कर दीजिए अपने बच्चों को, OR स्पेस बच्चे का नाम, और भेजे 3311063 पर. OR space बच्चे का नाम and send it to 3311063 पर. बहुत ही cool और fun activities यहाँ पर हमने plan की है, you know, related to health and hygiene. बहुत कम slots हैं, so ज़्यादा वक्त ना लगाएं, फटाफट से register कर दें. और सुनते रहिए Radio All 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: के लिए लेकर आया है हैप्पीनेस लाउंज, जिसमें वी गो टू द ऑफिसेज एंड वी प्ले सम फन गेम्स विद ऑल द एम्प्लॉयज देयर, सो दैट उनका जो मंडेन और मोनोटोनस रूटीन है उसमें से थोड़ा सा ब्रेक मिले, वो थोड़े रिचार्ज, री एनर्जाइज और रिफ्रेश हो जाए टू गो बैक टू वर्क विद अ लॉट ऑफ मोर एनर्जी, मोर एंथुजियाज्म एंड और भी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वाइल नाउ, काफ़ी सारे ऑफिसेज में हमने विजिट किया है, उनके साथ बहुत सारे गेम्स खेले, काफ़ी फन एक्टिविटीज करी एंड वी हैव गॉट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. उसके बाद से हमें ऑफिसेज से मैसेजेस आ रहे हैं कि अरे यार वो तो बहुत फन था यार, हमारे एम्प्लॉयज़ को बहुत मजा आया एंड उसके बाद से दे आर फीलिंग लाइक बेटर रिलैक्स्ड, यू नो, काम पे और ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है इस मोनोटोनस लाइफ में. तो वो ब्रेक हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं हैप्पीनेस लाउंज के थ्रू. सो कनेक्ट विद अस 3311063 पर एंड लेट अस नो इफ यू वांट अस टू ऑर्गेनाइज हैप्पीनेस लाउंज इन योर ऑफिस एंड इफ यू वांट टू चेक आउट द वीडियोस यू कैन गो टू आवर सोशल्स, radioolive.qa इज द हैंडल. स्टे ट्यून्ड एंड जय बिंदास.
1: Radio on

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए, बिकॉज लुलु बिग 5 डेज डील्स आर हियर। 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवीज, फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स, और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, 5 डेज बिग डील्स बिग सेविंग्स। विजिट लुलु हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com। लुलु बिग 5 डेज डील्स, मिस किया तो डील गई।
2: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
3: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
4: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
3: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
4: सुबह 9 बजे, एंड लेट देम प्ले, लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
4: Brought to you by Riyadha Medical Center.
5: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
6: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
4: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर एंड आई एम बैक विद मिस्टर अब्दुल्ला अल जुबारी द मार्केटिंग मैनेजर एट कतर सेल. सो मिस्टर अब्दुल्ला, मार्केटिंग इज योर फोर्टे राइट, बट द जनरेशन हैज चेंज्ड एंड यू नो द वे पीपल मार्केट देयर प्रोडक्ट्स हैज चेंज्ड अ लॉट. सो व्हाट इज दैट चेंज यू हैव सीन इन लाइक पास्ट 5 to 6 years एंड हाउ डू यू मैनेज दैट?
1: You know, as you mentioned, the generation has changed, but also the old generation is following up the new generation. So now, if you want to check at the old generation, say my dad, your dad, and everyone, they are now having social media. Also, they are following the pages on social media. So we are doing campaigns for both generations. For these days. The marketing is easier than before, to be honest. Now, a small short video, 3 seconds video or 5 seconds video, can describe the whole image of your campaign.
0: Wow, that makes sense. So when you're creating your own marketing team, what are the qualities you look for?
1: The good team, when you have, it's like a connection, okay? It's like a circle connection. So when you have the good design, when you have the good videography or the media company, and when you have the good plan for the, or the good strategy for the marketing campaign that you have, so here you can say we have a full marketing team in-house.
0: True. कुछ ही देर में लौट के आते हैं मिस्टर अब्दुल्ला और मैं. अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं. Stay tuned on Radio Bindaas.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो गया है मेरे जाने का मेरी जान. मिलते हैं कल सुबह 6 बजे. आप अपना ख्याल रखिएगा. Stay hydrated. बहुत सारा सनब्लॉक लगाना है. And I hope all the kids have an amazing first day. कल बात करेंगे कैसा रहा आपका पहला दिन. और अगर हमें अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लो ना. RadioOlive.qa is the handle. Also register your kids for back to school junior care club OR space kids name and send it to 33111063. मैं चलती हूँ. Have an amazing day to yourself. सुनते रहिए Radio Olive 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

गुड मॉर्निंग। यस, आज का दिन थोड़ा सा स्लो रखिए क्योंकि वीकेंड के बाद जो पहला वर्किंग डे आता है ना, उसमें बॉडी ऑफिस पहुंच जाती है लेकिन दिमाग अभी भी वीकेंड के बाद बेड पर ही पड़ा हुआ होता है। सो कुछ लोग सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बना लेते हैं और कुछ लोग अलार्म बंद करके बोलते हैं कि बस 5 मिनट और वो 5 मिनट का 45 मिनट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बाय द वे, मैं ये सेकंड वंस में आती हूँ जहाँ पर 5-5 मिनट करके मैं कब आधा एक घंटा निकाल देती हूँ, पता ही नहीं चलता। और एक कैटेगरी होती है हम सबकी फेवरेट, आज से लाइफ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे। सो संडे मोटिवेशन, मतलब स्पेशली फॉर यू नो अस जो संडे को हमारा नया वीक स्टार्ट होता है उनके लिए। और ट्यूसडे का अगर मैं बात करूँ, ट्यूसडे तक पहुँचते पहुँचते हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, वेंसडे को सर्वाइवल मोड पे आ जाते हैं और थर्सडे को इंतजार करते हैं कि बस भाई वीकेंड आ जाए। लेकिन आज एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछती हूँ कि आपका आज का मूड क्या है? फुल प्रोडक्टिव होना है, थोड़ा लेजी, या फिर ऑफिस में हूँ पर मेंटली कहीं और, या फिर मुझे बस चाय दो बाकी बाद में देखेंगे? कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? व्हाट्सएप पर मुझे सिर्फ बताइए 3311063 पर। शुरू कर रहे हैं लाइफ मस्त है, मैं हूं मुस्कान और ये है रेडियो ऑल 106.3 FM। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: सीन जो है वो सिर्फ कतर तक नहीं रुक रहा। दोहा फिल्म फेस्टिवल के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है। DFI सपोर्टेड 8 फिल्म्स टू जो 83rd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। फेस्टिवल जो है वो अब 2nd of September से 12th of September 2026 तक वेनिस में चलने वाला है। और मुझे इस स्टोरी में सबसे ब्यूटीफुल चीज पता है क्या लगती है, एक फिल्म जब स्क्रीन पर आती है तब हम सिर्फ एक्टर्स देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, वो कहानी यूजुअली स्क्रीन से बाहर रह जाती है। और कतर का DFI इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर और अरब वर्ल्ड की यूनिक स्टोरीज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में सपोर्ट कर रहा है। और अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आप मूवी देखते वक्त सबसे पहले क्या नोटिस करते हो, कोई स्टोरी, कोई एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी या फिर सिर्फ हीरो हीरोइन? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। व्हाट्सएप पे बताओ मेरे लिए मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। नंबर इज सेम 3311106 चल रहा है। लाइफ मस्त है, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

यार अगस्त खत्म होने में सिर्फ आज और कल का दिन बाकी है, सितंबर आ रहा है और कब साल के ये 8 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। फैशन लवर्स के लिए बात करते हैं, सितंबर आ रहा है और इसका मतलब है कि वार्डरोब को थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देने का टाइम भी आ रहा है। बाय द वे इतनी सारी जगहों पर सेल चल रही थी, शॉपिंग तो आपने की ही होगी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो कतर में ना ऑब्वियसली अभी स्वेटर्स निकालने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन सीजन चेंज के साथ फैशन भी थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। अब हेवी समर्स लुक की जगह आप थोड़ा लाइट लेयर रिलैक्स्ड शर्ट, न्यूट्रल कलर्स, स्कार्फ, स्टेटमेंट एक्सेसरीज और ऐसे आउटफिट्स चूज कर सकते हो जो डे टाइम से इवनिंग तक इजीली कैरी हो जाए। और फैशन का सबसे फनी बात पता है क्या है, हमारे कबर्ड में क्लोथ्स इतने होते हैं कि एक दिन लगता है कि मेरे पास पहनने को कितना कुछ है और दूसरे दिन लगता है कि आई हैव नथिंग, और वार्डरोब खोलने पर कपड़े बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी। सो आज का फैशन क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आपका वो वन आउटफिट कौन सा है जो ऑफिस, कॉफी, डिनर ऑलमोस्ट हर जगह पर चल जाता है। फॉर मी इट्स लाइक लूज डेनिम्स एंड टी शर्ट्स और शर्ट्स। व्हाट्सएप पे आउटफिट का नाम बताओ, क्या पसंद है आपको, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ड्रेस या फिर कोई जीन्स या कुर्ती, जो भी आपको लगता है कि यार ये तो गो टू है एकदम, कहीं भी पहन के जा सकते हैं। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: सो अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो एक जगह का नाम नोट कर लीजिए, दोहा ट्रेड फेयर 2026। यस, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लास्ट वीक से और 5th of September तक चलने वाला है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि DECC में। सो ऑफिशियल DECC लिस्टिंग के अकॉर्डिंग फेयर में 20 से ज्यादा कंट्रीज के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हैं और सेल के लिए वो भी परफ्यूम, एसेसरीज, होम डेकोर, शूज, कार्पेट, फूड प्रोडक्ट्स और अबायाज और डेली यूज आइटम्स जो भी होता है ना, सब कुछ है यहाँ पे। सो जब भी मुझे कोई ऐसा घर का फर्निशिंग वाला कोई कुछ खरीदना होता है, रूम के लिए कर्टन्स लेने होते हैं, तो मैं हमेशा इन तरह की चीज़ों पर ही फोकस करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सेल मिल जाती है और डिफरेंट डिफरेंट जगहों की वैरायटी भी। टाइमिंग तो आपको बताइए, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, फ्राइडे को सिर्फ दोपहर में 3 बजे स्टार्ट होता है। सो अभी तो संडे आ गया है आज, सो रात के 10 बजे तक चलेगा, आफ्टर इवन ऑफिस आप जा सकते हो। मतलब अगर आप वीकेंड में शॉपिंग का प्लान बना रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अब तो वीकेंड खत्म हो गया है। लेकिन मैं आपसे बस एक ही बात बोलूंगी और सवाल पूछूंगी एक्चुअली, कि आप शॉपिंग करने जाते हो या शॉपिंग आपको लेकर जाती है? क्योंकि हम सब बोलते हैं कि बस देखने जा रहे हैं, ज्यादा कुछ खरीदेंगे नहीं, घर के लिए बस ये एक ही चीज लेनी है, और अगर वापस आते हैं तो 3 बैग, 2 परफ्यूम्स, रैंडम किचन आइटम और एक चीज जिसका हमें खुद नहीं पता होता कि ये क्यों खरीदी है, ऐसा कुछ लेकर ही आते हैं। आप मुझे बताओ आपकी सबसे यूजलेस शॉपिंग क्या थी बाय द वे इस वीकेंड पर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: ready to learn
3: yes.
2: to play
3: absolutely
2: to grow
3: with Maserati.
4: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस Maserati फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
3: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
4: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक Maserati है आपकी पूरी फैमिली के लिए

So now let's talk about fashion and creativity. Arabian Women Exhibition 2026 का 15th edition जो है, वो अब start हो रहा है कल से. Yes, 31st of August से 5th of September तक. वो भी DECC में. Official DECC calendar के according, exhibition जो है, वो 10 से 10 बजे तक रहने वाली है. So we were talking about it और I was thinking कि यार यहाँ पर regional और international designers जो हैं, वो आ रहे हैं, lifestyle brands आ रहे हैं, participate कर रहे हैं और 200 से ज़्यादा designers जो हैं, वो अपने brand को showcase करने वाले हैं. By the way, sometimes क्या होता है ना, आप कई बार internet पे बहुत सारे designers को देखते हो, उनसे कुछ नया सीखते हो, आपको लगता है कि यार ये मुझे भी try करना है, या आपको अपना कुछ business खोलना है, और ऐसे ideas ना ऐसी जगहों पर जाकर ही मिलते हैं. So fashion का मतलब सिर्फ expensive चीज़ें या कपड़े खरीदना नहीं होता. कभी कभी एक सिंपल सा आउटफिट, एक ब्यूटीफुल बैग, या कोई पेयर ऑफ इयररिंग्स, या फिर कोई कलरफुल कॉम्बिनेशन, और सडनली आपको लगता है कि यस दिस इज़ मी. और इवन आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं. अगर मुझे जैसे बहुत मन करता है कि मैं कुछ हैंडलूम में देखूं, तो इतने सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं ना. आप फैशन फॉलो करते हो, या आप मुझे बताओ कि फैशन को आपने अकॉर्डिंग फॉलो करवाते हो. व्हाट्सएप पे लिखो ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हो, और अगर आप लिखते हो माई स्टाइल, दैट मीन्स अगर आपको अपना स्टाइल ज्यादा पसंद है, आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, बिंदास.

सो अब ना एक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सवाल पूछती हूँ आपसे, लेकिन टेंशन मत लो, संडे मॉर्निंग है तो एग्जाम की तरह नहीं पूछूंगी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। और यहाँ पर सवाल ये है कि बुक्स और एआई, आज एआई हमारे लिए ईमेल्स लिख रहा है, आइडियाज दे रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन क्या एआई एक ग्रेट स्टोरी भी लिख सकता है क्या? नेशनल लाइब्रेरी में, यानी कि कतर नेशनल लाइब्रेरी में इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर राइट टू इंस्पायर बुक एंड ऑथर इन एज ऑफ एआई इन कतर प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, विच विल बी ऑन 26th of September, सुबह 11:30 बजे से 3 बजे तक कतर नेशनल लाइब्रेरी में ये होने वाला है। और इस साल का फोकस है कतर की पब्लिशिंग इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना। और मुझे लगता है कि असली सवाल ये नहीं है कि एआई राइटर बन सकता है या नहीं, असली सवाल ये है क्या एआई वो फीलिंग समझ सकता है जो एक ह्यूमन राइटर अपनी लाइफ से लेकर स्टोरी में डालता है। मतलब उसके कितने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब वो कोई किताब या कोई कहानी लिख रहा होता है, उसका खुद का दर्द, उसकी खुद की प्यार, सब कुछ होता है, राइट? एक हार्ट ब्रेक, एक माँ की स्मेल, बच्चों का घर, बचपन वाला घर, पहला प्यार, सब कुछ होता है। सो डेटा से सब कुछ एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन महसूस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको क्या लगता है, एआई से लिखी किताब आप पढ़ पाएंगे और आप क्या वैसा ही फील कर पाएंगे? व्हाट्सएप पे यस एआई या फिर नो AI लिख के बताइए, और 3311016

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas. Time check.
2: Brought to you by
1: Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
3: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
3: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
4: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
3: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
5: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
6: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
5: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
6: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
5: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
7: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.

0: और अब वो टॉपिक जिससे कतर का हर वर्किंग प्रोफेशनल कनेक्ट करने वाला है। भाई वीकेंड कल खत्म हो चुका है, वर्क वीक आज स्टार्ट हो गया और संडे मॉर्निंग तक हम बोलते रहते हैं कि आज तो पक्का रिलैक्स करूंगा। फिर एक ईमेल आ जाता है, फिर एक व्हाट्सएप और फिर एक कॉलीग का मैसेज जिसमें लिखा होता है हाय जस्ट अ स्मॉल थिंग, और वो स्मॉल थिंग 17 टास्क में कन्वर्ट हो जाता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्ट है। एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ कि भाई मतलब संडे को हम हमेशा इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि ये बहुत ही प्रोडक्टिव होगा और फिर हम अपने वीकेंड को भी यू नो ऑफिस बना देते हैं। तो मेरा सिंपल सा रूल है, फ्राइडे सैटरडे जो दो दिन मिलते हैं उसमें सिर्फ अपने लिए टाइम निकालना है और संडे मॉर्निंग को फुल प्रोडक्टिविटी और एनर्जी के साथ ऑफिस पहुंच जाना है। थोड़ा सा रीसेट बहुत जरूरी है। सो आप मुझे बताओ कि आपका संडे मॉर्निंग कैसा होता है? फटाफट से आप सुबह उठ के सबसे पहले मेल्स चेक करते हो और बाकी की चीजें चेकआउट करते हो, या आपको लगता है कि यार ऑफिस जाके देखेंगे सबसे पहले एक कॉफी पियेंगे? यू टेल मी। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio Bindas.
1: Cool song.
2: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
3: Song of the hour. Song.
4: Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai?
1: Cool song.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

नाउ द टाइम इज जहां पर आपको लगता था बचपन में कि यार ये तो टाइम वेस्ट है, मतलब हर कोई आपको यही कहता था ना, एक्चुअली गेम्स खेलना टाइम वेस्ट नहीं होता. आज आप देखो वर्चुअल सिटी बैटल ग्राउंड कतर 2026 आ रहा है 1st of September से 30th of September तक, जहां पर दोहा फेस्टिवल सिटी में नॉर्मल गेमिंग कॉम्पिटिशन ही नहीं होने वाला, यहां पर बहुत कुछ होने वाला है. एंड जो प्राइज मनी है दैट इज $2 लाख तक का प्राइज पूल है. इतने सारे गेम्स हैं इसमें जिनके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं. मेरे सिबलिंग्स हमेशा ना ये स्क्रीन के सामने बैठ के गेम्स खेला करते थे, आई वॉज लाइक यार इसमें क्या इंटरेस्ट आता है इनको, तो मुझे तो गेम्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है. आपके घर वाले हमेशा आपको बोलेंगे कि बेटा गेम बंद कर दो, और आप हमेशा बोलते हो कि नहीं मम्मी बस थोड़ी देर और. और आज वो टाइम आ गया है जब आप अपना टैलेंट जो है यहाँ पे शोकेस कर सकते हो. और सच कहूँ तो गेमिंग अब सिर्फ टाइम पास नहीं है, कॉम्पिटेटिव गेमिंग एक प्रॉपर ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है. प्लेयर्स, कॉन्टेंट क्रिएटर्स, टूर्नामेंट्स, स्पॉन्सरशिप, पूरा इको सिस्टम है यार. सो आज घर पर डिबेट हो सकती है कि गेमिंग टैलेंट है या घर वालों के हिसाब से टाइम वेस्ट. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट.

0: सो आज आई हैव टू से कि मेरे जाने का टाइम हो गया, लेकिन आपके लिए सुपर हिट गाने लाइन अप कर दिए हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि भाई सितंबर का मतलब बस काम, स्कूल और रूटीन होने वाला है, तो रुक जाइए। अब देखिए, कल है 31st और परसों से पहली तारीख शुरू हो जाएगी। रुकिए रुकिए, कतर का सितंबर जो है वो एंटरटेनमेंट कैलेंडर भी काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले यहाँ पर कई सारे इवेंट्स होने वाले हैं, कई सारी इवनिंग होंगी जहाँ पर स्टोरीज, कॉन्सर्ट्स, बहुत कुछ होने वाला है। एंड आई वॉज वंडरिंग कि सितंबर में और भी ऑप्शंस हैं। एक तो आप अच्छी मूवीज देख पाओगे, बहुत सारी अच्छी मूवीज रिलीज भी हो रही हैं, और सितंबर का कैलेंडर कह रहा है कि घर पे नेटफ्लिक्स बाद में, पहले बाहर निकलो। इतने सारे इवेंट्स लाइनअप है कतर में। सो आज आई विल से कि अगर मैं आपको एक फ्री टिकट दे दूं, तो आप कहां पर जाना पसंद करोगे? कोई कॉमेडी शो, कोई इंडियन गिग, या कोई स्टैंड अप, या आपको लगता है कि कोई कॉन्सर्ट होना चाहिए? व्हाट्सएप पे बताओ मुझे कि क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा, और हाँ, रीजन भी बता देना, बिकॉज कतर आई नीड टू नो वेयर द फन इज। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। अभी के लिए आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कल मिलेंगे सेम टाइम सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Akshay Kumar.
5: Hi, this is Anushka Sharma.
6: And I'm Ashwin Varsi.
7: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
0: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: Rohan, kitni baar bola hai? Khana khane se pehle hand wash karna hai. Kaise samjhao is ladke ko?
2: Uff, subah shaam bas yahi tension. Bachcho ko lecture nahi, hum denge full-on fun. Because Rayada Medical Center aur Olive Suno Radio Network lekar aaye hain Back to School Junior Care Club.
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyada Medical Center.
3: JCI Accredited Riyada Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyada Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत के साथ स्वागत है यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज बैठ के एक साथ गाने सुनेंगे गुनगुनाएंगे ढेर सारे किस्से खबरें कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए बताइए मुझे क्या हाल है और यही बोलते हुए चलिए आज के ऑलिव रिचार्ज को किक स्टार्ट करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा. तो NFL करके एक लीग है, एक अमेरिकन लीग है, और उसमें एक मैच हो रहा था जिसमें न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स करके एक टीम जो है 28-3 के स्कोर से हार रही थी. सोच के देखिए 28-3, और NFL की हिस्ट्री में ऐसे डेफिसिट से कभी भी किसी टीम ने जो है मैच को नहीं जीता है. मगर जब मैच खत्म हुआ तो स्कोर था 28-34. जी हाँ, 3 पॉइंट से 34 पॉइंट्स तक जो है न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स चले गए और उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को 28 पॉइंट पे ही रोक के रखा. और यहाँ पे एक प्लेयर का नाम मैं बताना चाहूंगा जिनका नाम है टॉम ब्रेडी. इन्होंने 31 पॉइंट्स जो है ऑर्केस्ट्रेट किए ताकि उनकी टीम न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स जो है जीत पाए. और एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, एक नंबर जो टॉम ब्रेडी का बहुत फेवरेट है वो है 199, क्योंकि जिस साल टॉम ब्रेडी को टीम में पिक किया गया था वो उस पूरे साल के 199th पिक थे, यानी कि 198 टाइम्स उन्हें रिजेक्ट किया गया था. बहुत सारी टीम्स ने रिजेक्ट किया मगर 199th टाइम वो सेलेक्ट हुए और वो हमेशा उस नंबर को अपने दिल के करीब रखते हैं. और इस मैच की स्टोरी से हमें एक और चीज समझ में आती है, वो यही है कि द गेम इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई बैक टू स्कूल से अगर आप अभी तक वापस नहीं आए हो, बैक टू स्कूल के उस फन फिल्ड इवनिंग से अगर आप वापस नहीं आए, तो एक और चीज है आपके लिए जहाँ पे आप फन कर सकते हैं जाके, वो है रियादा का बैक टू स्कूल इवेंट। मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया चीज के बारे में जिसका नाम है बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब बाय रियादा मेडिकल सेंटर। ये 4 सितंबर को होने वाला है, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक रियादा मेडिकल सेंटर में होने वाला है। तो इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको एक मैसेज भेजना है, OR टाइप कीजिए, स्पेस अपने बच्चे का नाम, और सेंड कर दीजिए 3311063 पर। और यही बात बोलते हैं हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक छोटा सा लेसन जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा. ये बेसिकली एक रील मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था, तो मुझे काफी अच्छा लगा एक्चुअली उसमें जो लिखा था. मैंने सोचा मैं आपके साथ वो शेयर करूं. तो उस रील में जो है एक बहुत ही प्रोफाउंड बात कही गई थी. उसमें ये कहा गया था कि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, कभी कभी तुम ऐसी चीजों में फंस जाते हो जिसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं होता, मगर फिर भी तुम्हारे ऊपर इल्जाम आता है, या फिर कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर जो है थोड़ी ज्यादती कर देता है. अगर ऐसा होता है तो हमेशा याद रखना कि माफ कर दो, माफ कर दो, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात होती है, मगर भूलो नहीं करके. और इस मामले का तो इतिहास गवाह है, क्योंकि माफी देने में या फिर किसी को माफ करने में कोई बुराई नहीं है, मगर हमेशा याद रखना कि क्या हुआ था, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो. इसलिए कहते हैं फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट. और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: रेडियो

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय, मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर। जियो बिंदास।
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुबेर. तो जब हमने ऐसे रेडियो में कदम रखा, रेडियो की जर्नी शुरू की, तो स्टार्टिंग में ना ऐसे ग्रूमिंग सेशंस में क्रिएटिविटी लेसन्स होते थे, ऐसे क्लासेस होते थे जहाँ पे क्रिएटिवली कैसे सोचते हैं उन सब के बारे में बात होती थी. और बहुत ही थोड़ा बताते थे हमें कि यू हैव टू बी ए बिट वियर्ड, ओके, क्योंकि तो ही तुम ऐसे डिफरेंट तरीके से सोच पाओगे करके. तो मैं ऐसे कभी कभी बैठ के ऐसे सोचता था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है करके एक सेशन, ठीक है, रैंडम थॉट्स हमारे दिल में कभी कभी आ जाते हैं ना, कि हम ऐसे बैठे हैं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम से मन में ख्याल आता है कि भाई ये उजनु वड़ा जो है, मेदू वड़ा जो है, वो किसने बनाया होगा, किसने सोचा होगा, ये मसाला डोसा किसने बनाया होगा. ये छोड़ो, मैं तो ये कभी कभी सोचता हूँ कि भाई किसको ऐसे आइडिया आया कि चलो सांबार बना के देखते हैं या फिर दाल बना के देखते हैं. ठीक है, मैं ऐसे खाने के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में वही चलता है, ठीक है. बट क्यूरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इसलिए कभी कभी बैठ के इफ यू गेट सम टाइम, 5-10 मिनट मिल जाता है, 10-15 मिनट मिल जाता है, तो बैठ के सोचो ऐसे ही. ये वो हमारी इमेजिनेशन को बहुत हेल्प करेगा. आजकल के जमाने में जब हम AI इतना ज्यादा यूज करते हैं तो हम अपने ब्रेन पावर को बहुत कम कर रहे हैं. कभी कभी जब हम ऐसे बैठ के सोचते हैं तो हम अपने ब्रेन को भी फोर्स करते हैं डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए, और इससे हेल्प ये भी मिलती है कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में सोचने के लिए भी अपने आप को ट्रेन करते हैं. और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

वेलकम बैक फॉर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 4th सितंबर फ्राइडे को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रियादा मेडिकल सेंटर में होने वाला है रियादा बैक टू स्कूल इवेंट, जिसका नाम है बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब. इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्टर करने के लिए आपको मैसेज करना है हमें, तो मैसेज में OR टाइप कीजिए, स्पेस डालिए, अपने बच्चे का नाम टाइप कीजिए और सेंड कीजिए 3311063 पर. और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
0: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyada Medical Center.
2: JCI Accredited Riyada Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyada Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning.

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। अगर हम बात करें तो लेजेंडरी लोग हैं जैसे कि वसीम अकरम है, उसके साथ साथ जहीर खान है, बहुत पसंद करता हूं मैंने। और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग जो है काफी ब्यूटीफुल एक चीज है, यू नो कहते हैं ना कि पीस ऑफ ब्यूटी, एफ थिंग ऑफ ब्यूटी, वैसी एक चीज। अब मैंने रिसेंटली रियलाइज किया, मैं अपनी मम्मी से एक दिन बात कर रहा था तो मम्मी ने मुझे बताया कि मैं पैदाइशी लेफ्ट हैंडेड था। हाँ, बचपन में मैं लेफ्ट हैंडेड था, मेरे पापा ने मेरे हाथ को चेंज किया, उन्होंने मुझे राइट हैंडेड बनाया करके। और मेरे जो नाना थे उन्होंने बोला था कि नहीं, ऐसे नहीं बदलना चाहिए, नहीं करना चाहिए करके, मगर पापा ने नाना की बात मानी नहीं, उन्होंने मुझे राइट हैंड बना दिया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बनने का सपना, मतलब मैं तो पैदाइशी लेफ्ट हैंडेड बन के आया था तो चांसेस तो थे, मगर क्या करे, सोसाइटी की कंडीशंस ने मुझे ऐसा कर ही दिया। कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। बट एनीवे, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड में क्या होता है बेसिकली। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है राइट हैंडेड बैट्समैन है, मगर वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, मगर वो राइट हैंड से खाते हैं, मगर वो अगर चॉपस्टिक्स यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो एम्बिडेक्स्ट्रस है काफी। सिमिलरली सौरव गांगुली जो है वो राइट आर्म से बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। मैं भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ, राइट आर्म से बॉलिंग करता हूँ, मगर अगर मेरा लेफ्ट हैंड चेंज नहीं किया होता तो शायद मैं आज भी लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर रहा होता और शायद क्रिकेट सर्कल्स में नाम भी होता मेरा, कौन जाने, है ना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए, बिकॉज लुलु बिग 5 days डील्स आर हियर. 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवीज, फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स. और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी. तो देर किस बात की, 5 days बिग डील्स बिग सेविंग्स. विजिट लुलु हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com. लुलु बिग 5 days डील्स. मिस किया तो डील.
3: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, यू आर विद अस.
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो आप सीधा जाइए, इंस्टाग्राम खोलिए और रेडियो ऑलिव .qa सर्च कीजिए, वहां पे रेडियो ऑलिव का पेज दिखेगा। अगर फॉलो कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो कीजिए, हमारे कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके साथ साथ आप हमें सुनते हुए स्टोरी डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टैग कीजिए हमें, हम आपकी स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट जीतने के मौके भी आपके पास हैं। और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ऑरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ऑरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाओ इस लड़के को?
4: सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन, बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
3: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
4: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
3: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
3: Brought to you by Riyada Medical Center.
5: JCI Accredited Riyada Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
6: Visit Riyada Medical Center on Searing Road, Doha.
3: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, हम अपने टीम के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस को विजिट करते हैं और वहां पे बहुत फन करते हैं, चिल करते हैं, गेम्स खेलते हैं, एंटरटेन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ताकि काम का जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो थोड़ा कम हो जाए। लोग थोड़ा चिल करे, एंजॉय करे, हैप्पीनेस को एंजॉय करे, रिचार्ज हो जाए और रीएनर्जाइज हो जाए। अगर आप भी चाहते हो रिचार्ज होना, आप भी चाहते हो रीएनर्जाइज होना, आप भी चाहते हो कि रेडियो ओलिव की टीम आपके ऑफिस में आके फन करे, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को एंटरटेन करे, तो फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं हैप्पीनेस लॉन्च के लिए। तो अभी आपको मैसेज करना है HL स्पेस अपने ऑफिस का नाम 3311063 पर। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे मैसेज कीजिए और रजिस्टर कीजिए, और हमारी टीम से कोई मेंबर आपको कांटेक्ट करेगा, तो आप जल्दी मैसेज कर सकते हैं। एक फन फिल्ड इवनिंग नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हम दोपहर के टाइम पे आएंगे, इवनिंग में तो आप निकल जाओगे ना दोपहर या सुबह के टाइम पे आएंगे, ताकि आपके साथ हम भी चिल करें बहुत बढ़िया तरीके से। इवन इसके वीडियोस जो है कुछ हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी डालते हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
2: लगा और हो जा रिचार्ज ऑलिव रिचार्ज
1: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
2: ऑलिव रिचार्ज
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो गए। मगर कोई गल नहीं जी, फिर मिलेंगे आपसे चलते चलते, और बहुत सारी बातें करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे इसी सीट पर आपके साथ, गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए। तो हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। Stay tuned, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, और मैं था आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है,
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ, स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी।

विशाल ततलानी और ज़ारा खान की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल एफ पर। वेलकम जी, गुड इवनिंग। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक इवनिंग को जो है जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैंने अपने इन नाजुक नाजुक कंधों पे जो है वो उठा के रखी है। अब इवनिंग है तो वाइब होनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बस इसीलिए वाइब को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अमेजिंग वाले गाने मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल दिए। तो आपको बड़ा ही सिंपल सा काम करना है, आपको बस वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करना है और अपने रेडियो सेट्स के पास रहना है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग बातें जो है वो भी हम करने वाले हैं। बॉलीवुड की बातें करेंगे, इंस्टाग्राम पे क्या वायरल है उसकी बातें करेंगे, जेंजीज के दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, एंड आपके लिए जो है फैशन की भी, लाइफ स्टाइल की भी बहुत सारी बातचीत जो है वो मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ बस आपको स्टे ट्यून रहना है जबरदस्त इवनिंग पे। शो की वाइब को जो है थोड़ा और एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए अगला जो गाना है वो और ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, सो इसे इंजॉय करूं। मैं वापस आऊंगा मूवी से एंड बाकी मैं आती हूँ उसके बाद, जरा मौसम की बात करेंगे कि क्या कुछ खास होने वाला है। मोहे जवान की आवाज में ये गाना इंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਤੂੜਾ।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
2: Time check. Brought to you by Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 17:12। सो स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
4: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: Radio Olive, I'm a number one.
6: बातें नहीं, energy का booster मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त evening. सिर्फ Radio Olive पर. Jio Bindas.
7: Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets, and department stores. Where the world comes to shop. Just

0: क्या मैजिक है इस गाने में, लेकिन इसे सुनने के बाद ना ऐसे कुछ कुछ सा होने लग जाता है, पता नहीं क्या है, शायद इसीलिए मूवी का नाम जो है वो कुछ कुछ होता है रखा गया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहां पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाया हुआ है। बीड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपके एंटरटेनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी इवनिंग को यू नो जबरदस्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब मुझ पर है। हाँ जी, कुछ लोगों को जो है अभी भी डाउट होगा कि यार इस वक्त तो हम सिमरन को सुना करते थे, लेकिन सिमरन क्यों नहीं है, कशिश क्या कर रही है इस वक्त में? तो मैं आपको बता दूं कि सिमरन जो है इस वक्त वादियों में यू नो इन्जॉय कर रही हैं, वो मैगी खा रही हैं वादियों में, पहाड़ों में जाके। सो उन्हें इन्जॉय करने देते हैं, बाकी हम जो है अपना इन्जॉयमेंट जो है वो जारी रखते हैं। बात कर लेते हैं मौसम के मामले की कि क्या हो रहा है मौसम का हाल। सो इस वक्त अगर मैं टेम्परेचर आपको बताऊं दोहा का, तो 41 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहने वाला है। सनसेट जो है वो अब से कुछ ही वक्त में होने वाला है। तो आप सब लोगों से मेरी प्यार भरी एक ही इल्तिजा है कि अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं या कहीं पर यू नो ऐसे पैदल चल रहे हैं या बस कहीं जाने पहुँचने वाले हैं, गाड़ी रुकी हुई है, तो एक फोटो जो है वो मुझे ज़रूर से खींच के भेज दीजिए, क्योंकि मुझे ना सनसेट्स बड़े पसंद हैं। एंड आपसे बात करते हुए जो है शाम को ऑफ कोर्स मैं बाहर नहीं जा सकती एंड मैं सनसेट इन्जॉय नहीं कर सकती, एंड मेरे स्टूडियो में तो खिड़की भी नहीं है, तो मुझे कैसे दिखेगा सनसेट? तो जल्दी से प्लीज़ एक फ़ोटो क्लिक करके जो है सनसेट की या बाहर के मौसम की मुझे प्लीज़ भेज दीजिए 3311063 पर, ताकि मुझे भी थोड़ा सा यू नो अच्छा अच्छा सा फील हो जाए। बाकी मुझे अच्छा फील कराने के लिए हाय हेलो गुड इवनिंग आप कुछ भी कह सकते हैं 3311063 पर। बाकी मेरे कुछ साथी जो मुझे लाइफ मस्त है शो में भी जो है मैसेज किया करते थे, अस्मा जी जो है वो मैसेज कर चुकी हैं, तो इनसे भी बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। बाकी ज़बरदस्त हिट जो है उसका वक्त आ गया है। सो ये गाना जो है वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए एंड वाइब जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

बंटी और बबली मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कज़न्सो, आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम आपकी बेसिक जो है इवनिंग को जबरदस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसका बीड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर जो है उठा रखा है। अब बंटी और बबली गाना जो है ये मैंने जैसे ही सुना ना, मुझे एक बात रियलाइज हुई कि हम देसी फैमिलीज में जो बच्चे बड़े हुए हैं, इनकी कोई ना कोई एक आंटी जो होती है वो बुआ हो सकती है, फुप्पी हो सकती है, मौसी हो सकती है, खाला हो सकती है, इन सब में से किसी ना किसी का नाम जो है वो बबली ज़रूर था। मतलब कि कोई ना कोई आपका रिलेटिव ज़रूर होगा बबली आंटी के नाम से, बबली जो है होता ही होता है देसी फैमिलीज में किसी ना किसी का निकनेम, और बंटी चाचू बंटी मामू जो है वो किसी ना किसी के होंगे। सो बंटी भैया भी सबके होते ही हैं। सो देसी फैमिलीज में ना बच्चे ये कुछ ऐसे निकनेम्स हैं जिनके साथ बड़े होते हैं, और मुझे तो देखो ऐसा ही लगता है। बाकी मैंने आप लोगों से एक इल्तिजा की थी कि मुझे प्लीज़ बताइए कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर में जो है सनसेट होने वाला है, तो क्या सनसेट हो चुका है या कैसी जो है रोशनी इस आसमान में फैली हुई है। सो आप लोगों ने जो है एक अच्छी ऑडियंस के नाते जो है बहुत ही बढ़िया वाला काम किया है, अच्छी अच्छी फोटोज मुझे मिल चुकी है। एंड हाय मैडम गुड इवनिंग जो है वो इस्माइल जी ने लिखा हुआ है, एंड बहुत ही प्यारी सी जो है फोटो है वो भेजी है। विक्रांत जी ने जो है बहुत ही प्यारी फोटोज भेजी है, मतलब ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि एक फोटो की रिक्वेस्ट करो, डिमांड करो और इतनी सारी आ जाती है, एकदम क्लियर बढ़िया फोटो, क्या एस्थेटिक फ्रेम बनाया है विक्रांत जी, बहुत मजा आया। अस्मा जी ने मुझे फिर से गुड इवनिंग लिखा है, मोहम्मद काशिफ जी ने गुड इवनिंग लिखा है, मोहम्मद काशिफ अपना नाम लिखा है और मुझे एक फोटो भेजी है, थैंक यू सो मच काशिफ जी, बहुत अच्छा लगा। एंड अभी अभी एक मैसेज आया है यूसुफ जी का, एंड यूसुफ जी ने जो है वो फील अच्छा करके जो है एक बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है, थैंक यू सो मच। आई होप कि जैसा आपको इस यू नो बाहर सनसेट को देखकर अच्छा फील हो रहा हो, वैसे मुझे सुनकर भी अच्छा फील हो रहा हो, और अगर नहीं हो रहा है तो मेरा जो अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये सुन के पक्का अच्छा लगेगा ही लगेगा। एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो यू नो एक रोमांटिक गाना जो है वो डिमांड कर रहे थे, तो देखिए सनसेट हो रहा है तो एक रोमांटिक सा गाना तो देखो बनता है। सो वॉल्यूम बढ़ा कर ये गाना इन्जॉय करो, जन्नत 2 मूवी से मोहित चौहान की आवाज़ में। बाकी मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में आपके लिए एक अमेजिंग सी खबर लेकर, स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को?
4: सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
3: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
4: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
3: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
3: Brought to you by Riyadha Medical Center.
5: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
6: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
3: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
7: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
10: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: नंबर 106.3 FM
2: रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

अच्छा खासा खुश थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, फिर ये गाना चल गया और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये रोना सा आ रहा है। ऐसा कोई दुख भी नहीं है मेरे लाइफ में, पता नहीं क्यों बॉलीवुड वाले जो है ऐसे गाने बनाते हैं कि जिसको दुख नहीं है उसको भी दुख हो जाए कि यार कुछ तो टूटा होगा यार दिल में, कुछ तो होगा जो दुख रहा होगा, लॉन्ड्री जो कर रहे हैं भैया उन्होंने एक शर्ट घुमा दी होगी उसका दुख हो सकता है। और ऊपर से अरिजीत सिंह के गाने, मतलब अरिजीत सिंह अगर कोई इमोजी होते तो पूरे टाइम क्राइंग वाला इमोजी होते, क्योंकि इनके गाने सुन के या तो बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग आती है या तो हमेशा रोने वाली फीलिंग आती है मुझे। अगर आप मुझसे डिसअग्री करते हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कसोज एंड शो आपके लिए ज़बरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जो है ज़बरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा के रखा है। अब देखिए यार, मैंने आपको जो है थोड़ी देर पहले बताया था कि यार कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ मैं आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है मुझे रियलाइज हो रहा है। मैं बात कर रही थी दृश्यम मूवी की। सो जो बॉलीवुड की दृश्यम है जिसमें अजय देवगन है, वो वाली जो मूवी है उसका थर्ड पार्ट यानी दृश्यम द कंक्लूजन जो है वो इस 2 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है थिएटर्स में। लेकिन काफी सारे लोग जो है ये सोचते हैं यार हमने साउथ वाली दृश्यम देखी हुई है तो बॉलीवुड वाली तो हमें पता है कि एंड में क्या होने वाला है, लेकिन इस बार जो एंड है उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है, उसका कोई लेना देना नहीं है साउथ में जो अभी अभी दृश्यम आई थी उससे। सो आप एक बार चांस ले सकते हो दृश्यम कंक्लूजन का जो है उसका जो एंडिंग है उसे पता लगाने के लिए। फिलहाल देखिए मुझे ऐसा लगता है कि गानों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, 2 अक्टूबर को जो है अभी बहुत टाइम है, सो हो सकता है तब तक कोई और थ्योरी भी आ जाए, तब तक कोई और स्पॉयलर्स जो है वो भी आ जाए। फिलहाल वाला गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इस गाने को इंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Ready? Ready to learn,
3: yes.
2: To play,
3: absolutely.
2: To grow
3: with Maserati.
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैजराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
3: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स,
1: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैजराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए बिकॉज लुलु बिग फाइव डेज डील्स आर हियर 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स ग्रोसरीज होम अप्लायंसेस मोबाइल्स लैपटॉप टीवीज फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी तो देर किस बात की 5 डेज बिग डील्स बिग सेविंग्स विजिट लुलु हाइपरमार्केट्स या शॉप ऑनलाइन एट लुलु हाइपरमार्केट.com लुलु बिग 5 डेज डील्स मिस किया तो डील गई।

इस गाने में दिशा पाटनी और सलमान खान ने जो डांस किया है ना, वैसा डांस अगर वो ना ही करते तो ही बेहतर होता। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसुशन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, मैंने सोचा कि यार जब तक कोई चटपटी गॉसिप ना करो, जब तक कोई ऐसी चीज पे बात ना करो जिस पे जो है थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, तब तक जो है मजा नहीं आता लाइफ में, है ना। सो बस इसीलिए एक ऐसा टॉपिक में लेकर आई हूँ जिस पे दो लोगों के ओपिनियन जो है वो हो सकता है कि क्लैश कर जाए। अब रिसर्चर्स का ये कहना है, मेरा नहीं, ओके मेरा नहीं, रिसर्चर्स का ये कहना है, यानी रिसर्च करने वालों का, साइंटिस्ट का ये कहना है कि 80% लड़कियां जो हैं वो लड़ाई के बीच में, आर्ग्यूमेंट के बीच में जो है पुरानी बातें लेकर आ जाती हैं, एंड ये जो है 5 साल पुरानी बातों तक हो सकता है। यानी अगर आप आज किसी लड़की से लड़ रहे हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आप उनसे जो है अगर आप लड़ रहे हो तो वो 5 साल पुरानी बात भी बीच में ला सकती है एंड आपको याद दिला सकती है कि तुमने 5 साल पहले मेरे साथ ये किया था और तुम अभी भी मुझे डांट रहे हो। सो लड़कियां जो है वो भूल नहीं पाती है, आप उनके साथ उनका दिल जो है एक बार दुखा दो, फिर आपको जो है लाइफ टाइम भुगतना पड़ेगा। आप इस बात से कितना अग्री करते हो कि हाँ यार लड़कियां देखो भूल नहीं पाती हैं, वो जो है लड़कियों के मैकेनिज्म में, लड़कियों की वायरिंग में फॉरगेट का जो है बटन ही नहीं है, वो आपको फॉरगिव फिर भी कर सकती है लेकिन फॉरगेट नहीं करती है कभी। सो बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा है कि सच में लड़कियां जो हैं वो भूल नहीं पाती हैं, उभर नहीं पाती हैं किसी भी बात से, है ना, आर्ग्यूमेंट में बार बार पुरानी बातें ले आती हैं बीच में। बताइए मुझे 3311063 पर। और ये बताइए यार, ये जो रिसर्चर्स बात बात पे किसी ना किसी चीज पर रिसर्च कर देते हैं, ये कितने सही हैं? ये अपना काम जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे ही इन्होंने बस मन किया, एक के घर पे लड़ाई हो गई तो इन्होंने आके दूसरे दिन रिपोर्ट छाप दी कि यार हाँ ऐसे ही होता है, लड़कियां तो देखो लड़ती हैं तो पुराने आर्ग्यूमेंट बीच में ले आती हैं। गर्ल्स इन द चैट, जितनी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, प्लीज मैसेज करके मुझे बताओ कि ये बिल्कुल गलत है, मैं नहीं लाती बीच में पुरानी चीज़ों को, या लड़के जो है वो रिजॉल्व ही नहीं करते पुरानी प्रॉब्लम्स को, इसीलिए भी हमें बीच बीच में लानी पड़ती हैं पुरानी बातें, मुझे ये वाला पॉइंट भी चाहिए। सो दोनों ओपिनियंस, यानी मेल ओपिनियन और फीमेल ओपिनियन दोनों मुझे चाहिए 3311063 पर। बंधु जल्दी से फोन उठाओ और मुझे मैसेज कर दो, नंबर नहीं सुना फिर से बोल देती हूँ 3311063। फिलहाल बंधु बोला है तो बंधु 2.0 कॉकटेल 2 मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय करो, बाकी जबरदस्त इवनिंग में आपकी इवनिंग को तो जबरदस्त बनाई रहे। स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Trek. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी, आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:14. दैट इज 6:14. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
2: सुनो सुनो सुनो,
3: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
4: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
3: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी.

0: सरदार का ग्रैंडसन मूवी से ये रेडियो सेट पर आपने एंजॉय किया गाना अमेजिंग वाला। मैं हूँ आपकी कशिश, गुड इवनिंग जी। शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने के लिए जो है मैं मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। एंड यार देखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा ली है, सो आप भी थोड़ी सी मदद कीजिए। यू नो, हमने एक टॉपिक जो है वो आपके सामने उठाया है। रिसर्चर्स का ये कहना है कि 80% लड़कियाँ जो है पुराने आर्ग्यूमेंट्स को, यानी 5 साल पुराने आर्ग्यूमेंट्स को भी अभी की लड़ाई में ला सकती हैं, एंड ये जो है करती हैं आपके खिलाफ। सो मैं तो देखो इसको इसके खिलाफ हूँ यार, मैं तो नहीं करती। मैं तो अभी आप कुछ बोलो एंड मुझे जो है चाय पिला दो, मैं भूल जाऊंगी कि आपने मुझे क्या बोला था। सो मैं तो ये इंसान नहीं हूँ, मैं तो बहुत जल्दी फॉरगेट और फॉरगिव में बिलीव करती हूँ। एंड आई होप, आई विश एंड आई फील कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं। सो पता नहीं ये रिसर्च करने वाले किस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात से मैं अग्री करती हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आसानी से नहीं भूल पाती, एंड इसके पीछे जो है बायोलॉजिकल एक रीज़न भी है। अब लड़कियाँ जो है उनका स्ट्रेस हार्मोन और इमोशनल प्रोसेसिंग जो है वो अलग होता है, वहीं बॉयज़ जो हैं यानी जो लड़के हैं वो नेग्लिजेंस पे चलते हैं, एंड इसके पीछे भी इनकी कोई गलती नहीं है लड़कों की। देखो मैं लड़कियों, जितना भी मुझे लड़कियाँ सुन रही हैं, मैं लड़कों के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं ये बोल रही हूँ कि लड़के जो है वो सुनते ही नहीं है, लेकिन उनकी वायरिंग ही दिमाग की कुछ इस तरीके से है कि वो जो है ये नहीं कर पाते। जब भी आप बात करो रिलेशनशिप की या किसी आर्ग्यूमेंट की, तो लड़के ना सीधे विड्रॉल पे चले जाते हैं कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरा तो है ही नहीं और मुझे अभी बात नहीं करनी, क्योंकि लड़कों की ब्रेन की वायरिंग ही ऐसी होती है। साइकोलॉजिकल फ्लडिंग जो है इसे कहते हैं, एंड रिसर्च करी गई है गॉटमन इंस्टीट्यूट में, जहाँ ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था कि आर्ग्यूमेंट्स के दौरान जो है मेन में, यानी आदमियों में, मेल्स में जो है एक ऐसा रैपिड स्पाइक ऑफ हार्ट रेट जो है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना रिपोर्ट किया गया है, कि वो उन्हें विड्रॉ करने पर, उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो विड्रॉ करने में, यानी एकदम भाग जाने में सिचुएशंस पे बिलीव करता है। वहीं लड़कियां जो हैं वो ये रिजॉल्व करना चाहती हैं, सॉल्व करना चाहती हैं। एंड ये रिसर्च पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, बिकॉज मेरा अपोजिट है। मुझसे आप अगर लड़ने आओगे या मुझसे आप कन्फ्रंट करने आओगे, मैं तो सबसे पहले बोलूंगी मुझे बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैं तो देखो रोने ही लग जाती हूँ, एंड फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं रोते रोते भूल जाती हूँ कि मैं आखिर रो क्यों रही थी। सो मुझे नहीं लगता ये जो रिसर्च है ये सही है। वैसे देख लेते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनका क्या कहना है। सो आयशा जी का मुझे मैसेज दिख रहा है, आयशा जी ने कहा है कि यार कशिश ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मैं आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लड़ाई के बीच में लेकर आती हूँ, लेकिन वो 5 साल पुराने तो नहीं होते हैं, एक आध हफ्ते पुराने, जो मैं अपने अंदर स्टोर करके रखती हूँ, जिन्हें मैंने आउट लाउड नहीं कहा होता है, वो वाले जो थॉट्स हैं वो कई बार लड़ाई में बाहर आ जाते हैं। एंड ऐसे ही जो है रुबीना जी ने भी मुझे मैसेज किया था, एंड उन्होंने भी यही लिखा है कि जब मैं अपने अंदर अपने थॉट्स बहुत रखती हूँ, यानी मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ बताऊँ, तो वो जो थॉट्स हैं जब हम लड़ाई करते हैं तो बाहर आ जाते हैं। सो देखो वैलिड रीज़न है लड़कियों के पास। लड़कों, अगर आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में तो आप वो कह सकते हो। 3311063 पर आकर आप मुझे बताइए। फिलहाल जो है एक बहुत ही कूल वाला गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर कमली अनप्लग्ड वर्जन जो है इंजॉय करो, और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
2: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. Kyunki chal raha hai zabardast evening. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

पार्टी टुनाइट। देखो नाइट का तो नहीं पता लेकिन इवनिंग की पार्टी तो यही हो रही है। वेलकम जी, गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब आप बोलेंगे यार कशिश इतनी खुशी किस बात की हो रही है, इतनी खुशी बस इस बात की हो रही है कि शाम को आप सबसे मिलने का आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। अब क्या है ना कि ऑफिस जब आप लोग जाया करते थे मैं आपसे तब बात करती थी, सुबह 10 बजे मेरा शो आता था, लाइफ मस्त है, लेकिन अभी मतलब जब तक सिमरन जो है वो लौट कर नहीं आती अपनी वादियों से पहाड़ों से, तब तक मैं आपसे जो है इवनिंग में मुलाकात जो है वो किया करूंगी। सो अब क्या है, मॉर्निंग में तो आप ऐसे डीमोटिवेटेड से होते होगे ना कि यार ऑफिस जाना है, फिर से ऑफिस जाना है, फिर से काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी वापस आते हुए अरे वाह घर जाएंगे, खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। वैसे देखो थोड़ी सी थकान होती है लेकिन ये सिर्फ सोचना कि घर जाके कितना रेस्ट मिलेगा, घर जाके बस अपने सोफे पे अपने बेड पे लेट जाना है, ये थॉट ही कितना रिलैक्सिंग है। एंड मैं जो है इस वाले थॉट से पूरी तरीके से अग्री कर पाती हूँ क्योंकि इस वक्त तक मैं जो है निकल जाया करती थी अपने ऑफिस से एंड बस थोड़ी ही देर में मैं घर पहुंच जाया करती थी, तो मुझे वो फीलिंग पता है। मुझे अभी मेरी जो कमर है वो कह रही है कि यार बहन लेटने का तो वक्त हो गया है, अभी तक बैठी क्यों। सो आई नो दिस फीलिंग एंड अगर आपको भी ऐसी वाली फीलिंग आ रही है तो ब्रो वी आर द सेम। वैसे देखिए बहुत अमेजिंग बातचीत जो है वो हम शो पे करने वाले हैं थोड़ी सी देर में, नेम गेम में जो है वो हम खेलने वाले हैं, जहां पर एक मिनट में जो है जब मैं बोलती रहूंगी उतनी देर में आपको बस अपना नाम जो है वो टाइप करना होगा। आप ऑडियो नोट भी भेज सकते हैं अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो, वैसे अगल बगल अगर आप पैसेंजर प्रिंसेस हैं और अगर साइड में बैठे तो भी मैसेज कर सकते हो। फिलहाल 3311063 ये नंबर जो है ये अपने व्हाट्सएप पे खोल कर चैट रखो, ताकि जैसे ही मैं आपसे बोलूँ कि नेम गेम खेल रहे हैं हम, आपको अपना नाम भेजना है तो आप भेज सकें। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना, नहीं मालूम, नहीं मतलब नहीं मालूम, मुझे मालूम है गाना कौन सा है, गाने का नाम है नहीं मालूम, टोटल सयापा से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। बहुत ही अमेजिंग मूवी है अली जफर एंड यामी गौतम की, एक बार जरूर से देखिएगा। फिलहाल ये गाना इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो पिदास। वैसे इस मूवी में किरण खेर ने भी क्या उम्दा काम किया है। इंजॉय कीजिए, बहुत ही फन ट्रैक है। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

बात तो ये है जी कि नेम गेम खेलने वाले हैं हम। वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कसुशन। जबरदस्त इवनिंग शो चल रहा है। जल्दी जल्दी आपके पास सिर्फ 45 सेकेंड है, हम नेम गेम खेलने वाले हैं। जल्दी जल्दी अपना नाम जो है वो टाइप करके 3311063 पर भेज दीजिए। मैं जो है सबके नाम पढ़ने वाली हूँ, देखते हैं फास्टेस्ट टाइपिंग जो है वो किसकी है। सो फिलहाल अभी ऑलरेडी मैंने जब बोल दिया था कि यार देखो मैंने अदील जी ने अपना नाम भेज दिया है, वेरी नाइस। इमाद नासिर जी ने भी अपना नाम भेज दिया है, अशफाक जी ने भी अपना नाम भेज दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान जी ने अपना नाम भेज दिया है, थैंक यू सो मच। एंड मोहम्मद सादिक जी ने भी अपना नाम पहले ही भेज दिया है, मोहम्मद यूसुफ जी ने, फराह चांद नाम भी भेज दिया है, नूपुर जी ने नूपुर का नाम अपना नाम भेज दिया है, जमाल जी ने भी अपना नाम लिख के भेज दिया है। अरे वाह यार, आप सबके टाइपिंग स्किल्स तो बहुत ही अच्छे हैं। और विरुशंक ने भी अपना जो है नाम मुझे भेज दिया है, दीपक कांबले जी ने भी मुझे अपना नाम भेज दिया है, सो थैंक यू सो मच। एंड नेम गेम का वक्त यही समाप्त होता है, आने के बाद थोड़ी और फन बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। वैसे अब मुझे पता चल गया है कि आप लोग एक्टिव हैं तो हम कॉन्टेस्ट की बात जो है वो कर सकते हैं। आपको एक अमेजिंग चुटकी भर सॉन्ग जो है वो मैं सुनाने वाली हूँ, जहाँ पर एक गाने का पार्ट मैं आपको सुनाऊंगी और आपको गेस करना होगा। सो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए। फिलहाल एक ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जीओ बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: रेडी
3: टू लर्न
2: टू प्ले टू ग्रो
4: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
5: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
6: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
5: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
6: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
5: द वेट इज फाइनली ओवर बी रेडी

जी बिल्कुल, दिल मेल्ट मेल्ट तो कर जाता है आप लोगों की बातें सुन के। इतने सारे नाम आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी क्लासरूम में बैठी हूँ जिसमें टीचर जो है अटेंडेंस ले रही है और आपको प्रेजेंट मैम कह रहा है। सो नेम गेम में तो सबने अपना अपना नाम जल्दी जल्दी से मुझे भेज दिया है, लेकिन अब असली टेस्ट की बारी आ गई है कि आपके कान कितने ज़्यादा ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा बढ़िया चलते हैं। हम इसे कॉन्टेस्ट की जगह कान टेस्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज आपकी कान और आपकी ब्रेन के बीच का जो नाता है हम उसे चेक करने वाले हैं। हाँ जी, सो वॉल्यूम बढ़ाकर, जरा कान लगाकर और ध्यान लगाकर आपको हमारी बातें जो है वो सुननी है। वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड सो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी इवनिंग्स को यानी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक नाजुक कंधों पर जो है उठा रखी है। अब देखिए यार, वक्त हो गया है कान टेस्ट करने का आपके। सो आपको बस वॉल्यूम बढ़ाना है, एक गाने का चंक यानी गाने का छोटा सा पार्ट 3-4 सेकंड का मैं आपको सुनाने वाली हूँ, एंड ध्यान से सुनिएगा, बार बार नहीं सुनाऊंगी। उसमें आपको बस गेस करना है और मुझे मेरे नंबर पर यानी 3311063 पर बताना है कि ये कौन सा गाना है एंड कौन सी मूवी का है। मूवी बता दो, गाना बता दो, कोई एक चीज बता दो, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको ये गाना समझ आ चुका है। एक चुटकी सॉन्ग की कीमत तुम क्या जानो, आपका नाम तो आपने मुझे बताई दिया, तो अपने अपने नाम रिस्पेक्टिवली आप इसमें लगा सकते हैं। सो एक चुटकी सॉन्ग जो है इस कॉन्टेस्ट का, कॉन्टेस्ट का जो है नाम है। सो कान लगाकर और ध्यान लगाकर सुनिए, अब अगली आवाज़ जो है वो हमारे इस गाने की होने वाली है जो आपको गेस करना है। सो स्टे ट्यून और वॉल्यूम बढ़ा लो।

0: हाँ जी, ये वही गाना है जिस गाने को हर लड़की ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार अपनी एंट्री में जरूर इमेजिन किया होगा। सो बस इसी गाने को आपको पहचानना है कि कौन सी मूवी का ये गाना है और कौन सा गाना है, इस गाने का नाम क्या है। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से अपना फोन उठाओ और मुझे व्हाट्सएप कर दो अगर आपने ये गाना पहचान लिया है। तो फिलहाल इश्क अमीना 2.0 गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, बेबी डू डाई डू से इसे वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो। तब तक मैं देखती हूँ किस किसने गाना सही गेस किया है, उसके बाद गानों के उस पार जरा हम बताएंगे कि कौन कौन है वो जिसने बिल्कुल सही गेस गेम जो है वो खेला है।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याल है दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 7:12. दैट इज 7:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. दानादल बहार, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुख वाकिफ अलखोर.
3: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम. मैं हूं जैकी श्रॉफ.
4: रेडियो 106.3
3: जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: रेडियो ऑलिव, हमें नंबर वन.
6: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. जियो बिंदास.
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
9: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

वॉट एवर इज रॉन्ग विद दिस सॉन्ग आई लव दैट. मतलब इस गाने में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चनेबल हैं. मुझे जो है लिरिसिस्ट को क्वेश्चन करने का काफी मन कर रहा है, लेकिन मजा आ रहा है यार ये गाना लिखने में. मतलब लिखने में मजा आया होगा, मुझे सुनने में आ रहा है. मतलब ये गाना ना ऐसे लगता है कि तब क्यूरेट किया गया है, तब बनाया गया है. जैसे होता है ना कि ऑफिस में आपका निकलने का टाइम जो है वो 6 बजे का है, एंड आपके मैनेजर ने आपको 5:55 पे एक टास्क दे दिया है, बिल्कुल वैसे ही ये गाना है कि यार लिरिसिस्ट को जो है वो 6 बजे निकलना था और 5:55 पे यानी 5:55 पे आया डायरेक्टर और उन्होंने कहा कि यार एक गाना लिखना है जिसमें लड़का जो है वो कह रहा है लड़की से कि वो उसके आँखों का दीवाना है, उसकी बातों का दीवाना है, एंड उसकी हर चीज़ का दीवाना है. तो जल्दी से एक काम करो कि मेरी कल सिटिंग है तो तुम ये गाना लिख के दे दो, और आज जो है ये गाना चाहिए ही चाहिए, तो जाने से पहले ये गाना दे के जाना. एंड उसने लिटरली जो जो डायरेक्टर ने कहा वो सब लिख दिया. आँखों का दीवाना, बातों का दीवाना, हर किसी चीज़ का दीवाना. वैसे एक गाना है जो बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है और उस गाने की ही बात आज हम कर रहे हैं. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूस, एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहां पर जबरदस्त बना रहे हैं हम आपकी इवनिंग को. अब हमने आज के कॉन्टेस्ट में, जी कॉन्टेस्ट नहीं कॉन्टेस्ट, यानी आपके कानों को टेस्ट कर रहे हैं, आपकी बॉलीवुड की नॉलेज को हम टेस्ट कर रहे हैं चुटकी भर सॉन्ग के साथ, जहां पर चुटकी भर गाना जो है मैंने आपको सुनाया था और आपको गेस करना था कि ये गाना जो है वो कौन सा है. अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप जो है हमें आंसर कर सकते हैं. एक और बार ये गाना जो है वो मैं सुना देती हूँ आपको.

0: बस जी, चुटकी भर गाने की जो है बात हुई थी और चुटकी भर से तो ज्यादा ही आपको मैंने सुना दिया है। सो अब बारी आ गई है कि किस किस ने हमें सही आंसर दिया है उनका नाम जानने की। सो जल्दी जल्दी आंसर नहीं बताऊंगी मैं आपको, सिर्फ नाम पढ़ के बताऊंगी कि किस किस ने मुझे सही आंसर दिया है। नुपुर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड इलियास शेख जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, नयनदीप जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बोध आचार्य जी ने तो मुझे ऑडियो नोट भेज के गाकर ये जो है गाना सुनाया है, तो थैंक यू सो मच, उन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। समीरा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड कृष्णा जी ने, हाँ कृष्णा जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड अब्दुल्ला जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, कंग्रेचुलेशंस। यूसुफ खान जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, प्रियंका जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने एकदम प्रूव किया है कि उनकी उनके कान जो है वो बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, और सेकेंड टाइम गाना जो है वो सुनाते ही सोनू सिंह जी ने भी बिल्कुल सही आंसर हमें दे दिया है, एंड अनिल प्रताप अमर सिंह जी ने जो है शायद हाँ यही इनका नाम है, इन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। सर आपका नाम जो है वो हमें नहीं समझ आ रहा है, सो एक बार प्लीज अपना नाम फिर से लिख दीजिएगा, एंड साथ में ऑडियो नोट एक और आया है वृशाली जी से, सो इनका भी हम ऑडियो नोट पढ़ेंगे एंड जानेंगे कि क्या इन्होंने सही आंसर दिया। तब तक आपके पास भी मौका है, जल्दी से मैसेज करो 3311063 पर और बता दो कि क्या है इस गाने का नाम और कौन सी मूवी का ये गाना है। बाकी जबरदस्त हिट गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, रौला पे गया, रौला पे गया, हम दो हमारे दो से। सो रौला पे गया गाना जो है इंजॉय करके जरा वापस आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गाना है ये एक्चुअल में कौन सी मूवी से है एंड इस गाने का क्या नाम है, और बाकी और लोग जो मैसेज कर रहे हैं उनके मैसेजेस भी हम पढ़ेंगे। स्टे ट्यून और आपकी कशिश के साथ जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: देखिए जी, आंखियों से गल तो ये बंदी भी कर सकती है, लेकिन आंखियों से गल करूंगी तो आपको सुनाई कैसे देगा, क्योंकि आंखियों की गल माइक तो कैच नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। वेलकम, गुड इवनिंग, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त और एंटरटेनिंग बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नाजुक कंधों पर उठाया हुआ है। अब आपसे थोड़ी देर पहले एक चुटकी भर सॉन्ग मैंने आपको सुनाया था, जहां पर आपको ये वाला जो गाना है,
1: तेरे साथ साथ ऐसा
0: ये गेस करना था, और चुटकी भर से थोड़ा सा ज्यादा ही गाना मैंने सुनाया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया एंड बिल्कुल सही आंसर दिया है। कुछ और लोगों का मैसेज भी आया, इमाद जी ने तो मुझे पूरा गा के जो है वो सुनाया है, तस्नीम जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है एंड आसमा जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। जी हाँ, गाने का नाम है अजब सी एंड मूवी का नाम है ओम शांति ओम। अभी कुछ दिन पहले ही जो मैं रीवॉच कर रही थी मूवी, एंड यार ये मूवी जितनी बार देखो उतनी बार वो और ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है यार। वैसे चलो आपको जो है मैं अगला गाना सुनाती हूँ, उसके बाद जो है डिटेल में आकर इस पर बात करना चाहती हूँ, सो स्टे ट्यून रहो। एंड फिलहाल तेरी मेरी कहानी से एक बहुत ही अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो से, इस पर एंजॉय करो और कहते रहो आपकी कशिश के साथ जियो बिंदा।

0: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

गाने का नाम साड़ी याद, सुनंदा शर्मा की आवाज में ये गाना आपने एंजॉय किया। एंड इस गाने से नहीं एक्चुअली सिंगर से जुड़ी हुई एक बहुत ही फनी स्टोरी है। सो आई नो मेरी मम्मी मुझे इस वक्त तो सुन रही होगी, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहती हूँ कि सुनंदा शर्मा का ही एक गाना है, मेरी मम्मी नू पसंद नहीं तू वे तेरा गोरा मुँह मैं दसतैनू, पंजाबी गाना है। एंड ये गाना मेरी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद, मतलब लिटरली बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे जो है ये गाना बहुत मैं सुना करती थी, एंड मेरी मम्मी को सच में इस गाने से ना नफरत सी हो गई थी। एंड वो जितनी बार भी ये गाना आता था उतनी बार कह देती थी कि ये गाना बदलो, ये गाना मत चलाओ, ये गाना अच्छा नहीं है, ये क्या क्या सुनते रहते हो तुम लोग। ठीक है गाइज, ओके बोरिंग स्टोरी थी बट मेरी स्टोरी थी, मैं घर से दूर हूँ, मुझे याद आई तो मैंने आपको सुना दी। वेलकम, गुड इवनिंग, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाया हुआ है। अब देखिए, एक बात मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अगर आप अपने ऑफिस में या अपनी वर्क प्लेस पे जो है एक फन एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट करना चाहते हो, और चाहते हो कि हम यानी रेडियो ऑलिव के आरजेस जो है आपके ऑफिस में आए, तो आप बिल्कुल हमें इन्वाइट कर सकते हो। 3311063 नंबर, इस पे जो है आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम अपना हैप्पीनेस लाउंज लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे अपनी टीम के साथ, आपको गेम्स खिलाएंगे, गिफ्ट्स देंगे, एंड यू नो फन कर देंगे थोड़ा सा। तो 3311063 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि रेडियो ऑलिव की टीम आपके ऑफिस में या आपकी वर्क स्पेस पर आए और आपको कुछ देर का यू नो फन कराए। वैसे फन कराने की उम्मीद तो एक मूवी से करी गई थी, लेकिन वो करा नहीं पाई। मूवी का नाम जो था टॉक्सिक था, एंड वो सच में मूवी टॉक्सिक ही निकली, किसी को अच्छी नहीं लगी। तो फिलहाल जो मचाई है इस मूवी ने यानी तबाही, उसका ही गाना जो है एंजॉय कर लेते हैं। मूवी का नाम टॉक्सिक, गाना तबाही, एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास। थोड़ी सी देर में और अपडेट्स में सारी खबरें आपको मिलने वाली है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
1: द वेट इज फाइनली ओवर बी रेडी टू

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 8:12, दैट इज 8:12। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी, नो नॉइस नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर, सुख वाकिफ अलखोर।
3: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
3: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
5: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव पर।
6: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
9: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। मैं हूँ आपकी कसुर, शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ। एंड ये गाना सुनने के बाद ना मुझे ना मेरे बचपन का टाइम याद आ जाता है, जहाँ पर मैं डांस किया करती थी इस गाने पर। एंड रूही में ये गाना रिक्रिएट किया जा गया था, बट मुझे जो है पुराना वाला वर्जन ही इसका ज़्यादा पसंद है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे पुरानी चीज़ों की बात की जाए तो वो टाइम भी बढ़िया था जब हम रिमोट कंट्रोल कार से जो है खेला करते थे। आजकल असली की कार्स जो हैं वो रिमोट कंट्रोल वाली आने लग गई हैं, एंड मुझे नहीं पता कि हमें इसे कितना सीरियसली लेना चाहिए। बिकॉज चाइना में जो है रोबोट ओलंपिक्स जो है वो हो रहे थे, एंड इसमें जो है रोबोट्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे रोबोट्स पे काफ़ी शक हो रहा है कि ये करेंगे हमें ओवरटेक, ये खाएंगे हमारी नौकरी। क्योंकि रोबोट्स जो है कभी कभी जो है दौड़ते हुए इतना तेज दौड़ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ब्रेक कहाँ लगाना है, या ये दौड़ते दौड़ते ही कोलैप्स हो जाते हैं। किक बॉक्सिंग में इनका अलग डांस चल रहा है, डांस में अलग ये जो है घूमर घूमर कर रहे हैं। एंड इसके बाद इन रोबोट्स की जो वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है ये बहुत ज़्यादा फनी है। मतलब मुझे लग रहा है कि रोबोट बनाने वालों ने ज़रूर जो है इनको माधुरी दीक्षित की या तो फिर ऐश्वर्या राय की जो है वीडियोस जो है इनके अंदर फीड करी हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही चीज़ें कर रहे हैं। इनकी बॉडी में एक अलग टाइप की लचक है, ये डांस कर करके चल रहे हैं, लेकिन जो इन्हें काम करने को बोला गया है वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रोबोट ओलंपिक्स जो है वो चाइना में चल रहा है, एंड वहाँ पर अलग अलग टाइप की रोबोट्स को जो है कम्पीट कराया जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि क्या ये ह्यूमंस की जो है जगह ले सकते हैं, कि क्या ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं काफ़ी सारे कामों में। एंड जो लोग देखने के लिए आए हैं ये ओलंपिक्स, वो लोग इनकी परफॉर्मेंस देख के जो है ऐसे मतलब एस्टोनिश हो ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि ओ माय गॉड क्या परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन तभी रोबोट्स ने ह्यूमंस को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखा और वहाँ पर खुशी के मारे रोबोट कोलैप्स हो गया लिटरली। और ये हुआ है, मैं कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ, आप चाहे तो अभी इंटरनेट पे जो है वो सर्च कर सकते हैं, वरना इंस्टाग्राम पे आकर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जो है वो वीडियोस जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगी। एंड मुझे सच में नहीं पता था यार रोबोट्स जो है वो इतने फनी हो सकते हैं। मुझे लगा था कि मैं ही जोक मार सकती हूँ या मैं ही गिर पड़ रही हूँ, मैं ही थोड़ी सी क्लमजी हूँ, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा क्लमजी जो है ये रोबोट्स हैं जिनका ओलंपिक चल रहा है। फिलहाल इस कूल बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है आपको एक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो सुना देना चाहिए। सो ये गाना जो है वो आ रहा है रॉकस्टार, गाने का नाम है अली जफर की आवाज़ में। ये गाना आप इंजॉय करके आओ, उसके बाद ज़रा जेन ज़ी डिकोडेड में बीइंग अ जेन ज़ी बीइंग अ सर्टिफाइड जेन ज़ी मैं आपको बताने वाली हूँ एक टर्म के बारे में जो जेन ज़ी आजकल काफ़ी यूज़ कर रहे हैं कॉर्पोरेट कल्चर में। सो वॉल्यूम बढ़ाकर गाना इंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
2: Zabardast evening. Make you drive golden with.
3: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

उदित नारायण और अलका यागनिक जी की आवाज में मिशन कश्मीर मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाया हुआ है। अब देखिए यार, पिछले एक हफ्ते से किसी न किसी तरीके से मैं किसी न किसी को ये जरूर समझा रही हूँ कि कौन सी जनरेशन में पैदा हुए इंसान को जेंजी कहते हैं, कौन से जनरेशन वाले को अल्फा कहते हैं, कौन से को बूमर कहते हैं, कौन से को जिलेनियल कहते हैं, कौन से को मिलेनियल कहते हैं। लेकिन मी बीइंग फुल ऑन जेंजी, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो है मैं जेंजी स्लैंग्स और जेंजी वर्ड्स जो आजकल काफ़ी यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में बताऊं, ताकि आप जो है से कंधे से कंधा मिला के चल पाएं इंटरनेट से एंड जेंजीज के साथ। बिकॉज अब जेंजी जो है वो कॉरपोरेट में एंटर कर चुके हैं, यानी कॉरपोरेट मतलब आपके ऑफिस में आपकी डेस्क पे आपका कोई नया इंटर्न या आपका कोई कोवर्कर जो है वो बैठा होगा जो जेंजी होगा, एंड वो आपसे बात करेगा जेंजी वाली यू नो स्लैंग्स में, एंड आपको समझ नहीं आएगा। सो इसीलिए मैं जो है जेंजी डी कोडेड में लेकर आ गई हूँ आज का स्लैंग, आज का वर्ड जो है 404 कोडेड, 404 कोडेड मतलब 404 भी बोल सकते हो आप उसे, बोलने में 404 बोलते हैं लेकिन अगर आप कहीं लिख रहे हो तो 404 कोडेड आप बोल सकते हो। जैसे इंटरनेट पे आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो एंड वो नहीं मिलती है तो 404 यू नो एरर आ जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो स्लैंग है यूज़ होता है जब आप क्लूलेस होते हो, आपको कोई आइडिया नहीं होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो आप कहते हो कि यार आई एम 404 कोडेड, या शी इज़ सो 404 कोडेड, शी डोंट नो अबाउट एनीथिंग। सो आप ऐसे जो है इसे एज इन अ स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो, 404 कोडेड या 404 कोडेड। जेंजी डिकोडेड में आज का शब्द यही है। अगर आपको ऐसे वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं सो मैं ऐसे वर्ड्स और लेकर आऊँगी, एंड बाकी थोड़ी सी देर में आपको जो है एक मूवी रिकमेंड करने वाली हूँ। एक्चुअली एक नहीं, दो तीन मूवी जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको ये मूवीज जो है ये सुन के। फिलहाल एक मूवी जो मैं आपको रिकमेंड करने वाली थी उस मूवी का ये जो गाना है अगला आने वाला है केके की आवाज में, मक्खी मूवी का अरे अरे अरे अरे, सो अरे रे, इसे एंजॉय करो वॉल्यूम बढ़ाकर। आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रही और कहते रहिए जियो बिंदास।

तो देखिए, हाफिज इमरान जी की फरमाइश पे हमने आपको जो है नुसरत फतेह अली खान साहब का एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक जो है वो सुना दिया। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आप मेरे साथ जबरदस्त इवनिंग शो एंजॉय कर रहे थे। हाँ जी, मैंने वादा किया था कि मैं आपको मूवीज के बारे में बताऊंगी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं बता पाई। कल प्रॉमिस, पक्का वो 5 अमेजिंग मूवीज बताऊंगी आपको, जिन पे मैं बार बार लौट कर वापस जाती हूँ। तब तक जाते जाते जो है मैं आपको बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर बैक टू स्कूल वाला इवेंट आपके बच्चों ने मिस कर दिया था जो हमने पिछले थर्सडे कराया था, तो आप नेक्स्ट फ्राइडे जो है यानी 4 सितंबर को अपने बच्चों को रियादा मेडिकल सेंटर में जो है हमारा जो बैक टू स्कूल बैच होने वाला है उसमें लेकर आ सकते हो, एंड बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग फन मस्ती मज़ा होने वाला है वहाँ पर। देखो, रजिस्टर करने के लिए आपको बस हमारे व्हाट्सएप नंबर 3311063 पर आकर अपना नाम भेजना है और उसको सेंड कर देना है OR के साथ। सो जल्दी से अपने बच्चों को रजिस्टर कर लीजिए। बाकी जाते जाते वही कहूँगी जो हर रोज़ कहती हूँ कि अपना ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना और स्टे ट्यून्ड रहना। कहते रहना जियो, बिंदास, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Radio

0: 106.3 FM. Gio Bindas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
3: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
3: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।
2: ये है मिडनाइट लाउंज।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: गुड 10 मैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: Çandını

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.